0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 सिंध के
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
1: अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 4।

0: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM
1: 90.4 शान मौला जाने देखे ताकत ना गे शान रिसालत मौला जाने देखे ताकत ना गे मालिक जो महबूब मोहम्मद को लेके

पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बावाज़े बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बावाज़े बुलंद।

सारी के आशिक बैठे हैं, फिर अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाएं, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समाथर में बावाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बावाजे बुलंद, हैदर बरगा सकीन कोई नहीं।

0: बस बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे
1: हो नारे हैदरी।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

ईरान आरन ठाहींदो नई मिज़ाइल प्रोग्राम ऐं मज़ामती ग्रुपनि जी मदद कंदो। ईरान जा 24 अरब डॉलर जा मनमंद सासा जारी कया वेंदा। ईरान ऐं अमरीका विच में 14 नुक़्तनि वारी मसूद जा तफ़सील साम्हूं अची विया। अमरीकी मीडिया जो चवण आहे त मुआदे ते सहिण बाद आबना हुरमज़ जी नाकाबंदी ख़तम कई वेंदी। मसूदे में ईरान जे तेल ऐं पेट्रोकेमिकल बरामद ते पाबंदियूं हटाइण पिण शामिल आहे। रमज़ान समेत सभिनी महाज़नि ते फौरी ऐं मुस्तक़िल जंगबंदी जो मुतालबो पिण कयो वियो आहे। अमरीका ऐं हुन जे इतिहादनि खे ईरान जे नए सिर तामीर लाइ घटि में घटि 300 अरब डॉलर फराहम करणा पवंदा। अमन मुआदे जी तौसीक़ सलामती कौंसिल जे ठहराउ वसीले कई वेंदी।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंडीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GAFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: ZFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ ZFM 90.4।

अमरीका ईरान में अमन मुआदो थी वो मुआदे ते सहन वाली तकरीब 19 जून ते स्विट्जरलैंड में थन्दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो आहे त ईरान ऐं अमरीका लबनान समेत समूरनि महाज़नि ते फौजी कार्रवाइयूं फौरी ऐं मुस्तक़िल तौर ते ख़त्म करण जो ऐलान कयो आहे। तकरार जी सफ़ारती हालत ते अमरीका ईरान जो बि थोरायता आहियूं। मुआदे लाइ सऊदी अरब, कतर ऐं तुर्किया जो किरदार बि साराह चुको रहियो। ॿिन्ही मुल्कनि सां सफ़ारतकारी राब्तनि जो सिलसिलो जारी रहंदो। मुबारक, ईरान सामन मुआदो थी वियो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ऐलान। सदर ट्रंप चयो आहे त अबना हुरमज ईरानी बंदरगाह जी नाकाबंदी ख़त्म करण शुरू करे छॾी आहे। जहाज़नि जी अच वञ जुमे खां शुरू थी वेंदी। अबना हुरमज मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खां टूल टैक्स न वरितो वेंदो। दुनिया जा जहाज़ पंहिंजूं सरगर्मियूं शुरू कनि। ईरान अमरीका खे अमन मुआदो क़बूल करण ते मजबूर कयो। मफ़ामत जी यादाश जो मतिलब दुश्मन ते भरोसो करण आहे। आख़िरी मुआदे लाइ ॻाल्हियूं 60 ॾींहनि अंदर थींदियूं। जेकॾहिं मुआदे जो एतराम न कयो वियो त ईरान जवाब ॾींदो। ईरान जे नायब परॾेही वज़ीर काज़म गरीबाबादी चयो आहे त अमरीका जे साम्हूं जी नाकाबंदी अॼु खां ख़त्म थी वेंदी। ईरानी सुप्रीम लीडर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मुआदे बाबति जल्द बयान जारी कंदी। मुआदे जो मतन सयुनि बाद जारी कयो वेंदो। ईरान एटमी हथियार न ठाहींदो। नई मिज़ाइल प्रोग्राम ऐं मज़म्मती ग्रुपनि जी मदद कंदो। ईरान जा 24 अरब डॉलर जा मज़म्मत असासा जारी कया वेंदा। ईरान ऐं अमरीका विच में 14 नुक़्तनि वारे मसइले जा तफ़सील साम्हूं अची विया। अमरीकी मीडिया जो चवण आहे त मुआदे ते सहन बाद अबना हुरमज़ जी नाकाबंदी ख़त्म कई वेंदी। सऊदी में मसूदे में ईरान जे तेल ऐं पेट्रो केमिकल बरामद ते पाबंदियूं हटाइण पिण शामिल आहे। लबनान समेत सभिनी महाज़नि ते फौरी ऐं मुस्तक़िल जंग बंदी जो मुतालबो पिण कयो वियो आहे। अमरीका ऐं हुन जे इतिहादनि खे ईरान जे नए सिर तामीर लाइ घटि में घटि 300 अरब डॉलर फराहम करणा पवंदा। अमन मुआदे जी तौसीक सलामती काउंसिल जे ठहराउ वसीले कई वेंदी। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां अमरीका ऐं ईरान विच में अमन मुआदे जी आजियां। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त अमरीका ऐं इस्लामी जमहूरिया ईरान में अमन मुआदे जी आजियां कयां थो। अमन मुआदो तकरार घटाइण ऐं ॻाल्हियुनि ज़रिए अमन खे अॻिते वधाइण तरफ़ पहिरियों क़दम आहे। अमन अमल खे अॻिते वधाइण में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी क़यादत ऐं विज़न खे ख़िराज तहसीन पेश कयां थो। फील्ड मार्शल सिलासु मुनीर जे इलाक़ाई इस्तक़ाम लाइ हिमायत तारीफ़ लाइक़ु आहे।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GAFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
4: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
4: जी हाँ, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

0: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

high-tech music.

रोशन नहीं थी लिखी है सांसों पे मेरे मेरी सब भाषा है तुम्हें से जीऊंगा कैसे तेरे बिन मुझे सिर्फ इतना बता जा मेरी जान जाने से पहले मेरी जान पर भटका

Tech Music.

0: Pakistan ki shaan.
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4.
4: छा वहां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल.
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन.
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
4: 0331252576.
5: जी हा, 2315525786.
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़.

0: वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार और आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में कॉल्स के थ्रू. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके साथ साथ आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं GFM88 के पेज के ऊपर आने के बाद पोस्ट मिलेगी आपको जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. फेसबुक यूजर्स लोग और जो लोग सिंपली मैसेज करना चाहें, सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे. सुर लगाओ गाना सुना हमारा सेगमेंट हम स्टार्ट करते हैं जी. एंड देखते हैं आज के सेगमेंट में फर्स्ट कॉलर कॉर्नर कहाँ से. हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम
0: वालेकुम. अस्सलाम कर रहे हैं
1: आप? सावल बात कर रहा हूँ.
0: आप सावल मोरो से कैसे ठीक ठाक? कौन सा गाना सुना रहे हैं हमें?
1: जी जी मैं सॉन्ग सुनाऊंगा.
0: सुना दें.
1: मनोहर वाला एक सॉन्ग है.
0: ओके.
1: मगिया पे तो मगिया, मगिया पे तो मगी, इश्क खबर आई तदा तो झुमरू पाई, इश्क खा पर आई तदा तो झुमरू पाई, तो सच न तो खे लगिया, सुहत तो खे मगिया.
0: अच्छा, इस गाने का टाइटल क्या है?
1: मगिया स्वाद तो खे मगिया.
0: मंगिया
1: मगी मगी
0: मगिया. ओके, मैं इसको सर्च करती हूँ और किसी को डेडिकेट करना है.
1: अस्सी बदल ढेलो को, पचपन ढेलो को, इसका मेरे ढेलो को, जो भी सुन रहे हैं मेरे तरफ से सलाम अलैकुम.
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज. और जी इसके अलावा ये रहा गाना और इसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. थोड़ा सा आगे से प्ले करेंगे.

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
3: कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331786।
4: जी हाँ 2315257786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है. मुझे कहते हैं आज ये रुखसार. आपका हुआ है साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कॉल्स के थ्रू. हमारा सेगमेंट है सुर लगाओ गाना सुनाओ, जिसमें हम लेने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट कॉल. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं?
1: असद बात कर रहा हूँ सकरण से.
0: असद बात कर रहे हैं सकरण से. बड़े दिनों बाद नहीं आपने कॉल की? ओके, गाना सुनाएंगे?
1: हाँ, गाना मुझे सुना दे आज.
0: सुना दे.
1: हाँ, कोई सुना दे, सिंधी है या उर्दू सुना दे.
0: ठीक है, आप सुनाएंगे तो मैं सुनाऊंगी ना. कौन सा गाना है? ओके, सुनाइए. चले, मैं आपको सुना देती हूँ. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज. 03000113488. अच्छा, सेगमेंट का रूल है, माजरत के साथ, जो बंदा आके गाना गाएगा ना वही गाना मैं प्ले करूंगी. अगर आप मुझे सिर्फ टाइटल बता देंगे तब मैं प्ले नहीं करूंगी. रूल ये है कि गाना पड़ेगा तब आपका प्ले होगा. अच्छा, नेक्स्ट कॉलर. हेलो, गलती से कॉल लगी थी क्या? अच्छा, एक और कॉलर. हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
2: शहर गुलाब लिगारी कोट में साफ खान से. शहर खान खान रिंद.
0: कैसे भाई, ठीक ठाक?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, आप सुनाओ.
0: जी मैं बहुत अच्छी. मुझे बताएं कि ये प्रोग्राम सुनते हैं?
2: जी हाँ, प्रोग्राम सुन रहे हैं.
0: ओके, और मुझे ये बताओ, सॉरी बताएं कि गाना सुनाएंगे?
2: जी
0: गाना सुनाएंगे.
2: चल, आज तो मरम हराम के दिन है मेरा ख्याल है.
0: अरे कॉल कट गई भाई की, पता नहीं क्या कह रहे थे भाई. अच्छा, एक और कॉलर लेते हैं जी, ट्राई करते हैं. हेलो,
3: सलाम अलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं?
3: जी अलाउद्दीन बात.
0: ट्राई करते हैं. हेलो,
3: सलाम अलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं?

हम प्ले करने जा रहे हैं एक और खूबसूरत सॉन्ग, और ये जो खूबसूरत सॉन्ग है इसको प्ले करके हम आपको बताएंगे आज का टंग ट्विस्टर कि क्या होने वाला है. सो हियर कम्स द सॉन्ग व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल. सुनेंगे, एंजॉय करेंगे.

वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जे ऐलान बाद अमरीकी सदर ट्रंप पैरान सां मुआहिदो थियण जी तस्दीक करे छॾी। ट्रंप चयो आहे त मुआहिदे ते सहियुनि बाद जुमेवारे ॾींहुं अबनह हुर्मज़ बि खुली वेंदो। ईरानी बंदरगाह जी नाकाबंदी बि ख़त्म करे शुरू करे छॾी आहे। जहाज़नि जी अचवञु जुमे खां शुरू थी वेंदी। अबनह हुर्मज़ मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खां टूल टैक्स न वरितो वेंदो। दुनिया जा जहाज़ पंहिंजूं सरगर्मियूं शुरू कनि। नायब सदर जीडे वेंस चयो आहे त सदर ट्रंप ईरान जे ख़तरे खे ख़तम करण में कामयाब रहियो आहे। मुआहिदो 50 सालनि ताईं विच ओभर खे तब्दील करे छॾींदो। मुआहिदे सां विच ओभर में खुशहाली जी शुरूआत थींदी। ईरान अमरीका खे अमन मुआहिदो क़बूल करण ते मजबूर कयो। मफ़ामती यादाश जे मतिलब दुश्मन ते भरोसो करण नाहे। आख़िरी मुआहिदे लाइ ॻाल्हियूं 60 ॾींहनि अंदरि थींदियूं। मुआहिदे जो एतराम न कयो वियो त ईरान जवाब ॾींदो। ईरान जे नायब परॾेही वज़ीर काज़िम गरीबाबादी चयो आहे त अमरीका जी सामूरी नाकाबंदी अॼु खां ख़त्म थी वेंदी। मुआहिदो जो मतन सॼनि बाद जारी कयो वेंदो। ईरान जे खातो अंबिया चयो आहे त शिकस्त बाद अमरीका ऐं इसराइल वटि हथियार फिटा करण खां सवाइ ॿियो को ऑप्शन न हो। ईरान एटमी हथियार न ठाहींदो। नई मिज़ाइल प्रोग्राम में मज़मती ग्रुपनि जी मदद कंदो। ईरान जा 24 अरब डॉलर जा मजमूद असासा जारी कया वेंदा। ईरान ऐं अमरीका विच में तय थियल 14 नुक़्तनि जा तफ़सील साम्हूं अची विया। अमरीकी मीडिया मूजिबि मुआहिदे ते सहियुनि बाद अबनह हुर्मज़ जी नाकाबंदी ख़त्म कई वेंदी। ईरान जे तेल ऐं पेट्रोकेमिकल बरामद तां पाबंदियूं हटायूं वेंदियूं। लबनान समेत सभिनी माज़नि ते फौरी ऐं मुस्तक़िल जगबंदी जो मुतालबो शामिल। अमरीका ऐं सरहद इतादनि खे ईरान जे नए सिर तामीर लाइ घटि में घटि 300 अरब डॉलर फराहम करणा पवंदा। अमन मुआहिदे जी तौसीक़ सलामती काउंसिल जे ठहराउ वसीले बि कई वेंदी।

ऐं मर्दान में तरबियती जहाज़ किरी तबाह। ब पायलट शहीद। आई एस पी आर मूजिब तरबियती जहाज़ उॾाम दौरान किरी तबाह थियो, जंहिं सबबु ब पायलट शहीद थिया आहिनि।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

guys, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जैसे कि गुजार है, मुझे कहते हैं आज ये रुखसार, आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113400.

0: आगे जो कॉलर लाइन पे सलाम, प्रोग्राम सुन रहे?
1: मैं बात कर रहा हूँ जी।
0: प्रोग्राम सुन रहे?
1: हाँ जी जी।
0: कौन सा प्रोग्राम है?
1: प्रोग्राम है, नाम भूल गया।
0: नाम भूल गए? मेरा याद है।
1: हाँ बाजी, उससे और बात कर रहे हैं।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा टंग टेस्टर सुनाई है? वो भी भूल गए।
1: हाँ वो भूल गए,
0: वो भी भूल गए। अगर मैं बताऊँ तो बोलेंगे
1: पहले बार टालती है तुम्हारे प्रोग्राम में, बस सुनता हूँ अभी।
0: अरे वाह क्या बात है, मतलब पहली बार कॉल की या पहले लगी नहीं थी?
1: नहीं लगी नहीं थी, कॉल स्पेशल करता हूँ।
0: अच्छा वैसे करते ही लगी नहीं थी?
1: नहीं,
0: कि अगर मैं बोलूं टंग ट्विस्टर मैं बताऊं तो क्या मुझे बोल के दिखाएंगे?
1: क्वेश्चन करेंगे भाई।
0: अच्छा आपने कहना है लाला ने लंबे लॉन में लाल लाल लड्डू लटकाए।
1: लाला ने लंबे
0: लॉन में,
1: लॉन में
0: हाँ
1: लाल लड्डू लटकाया।
0: हाँ लाल लाल लड्डू लटकाए।
1: लाला ने लाल लड्डू लटकाया, लाला ने लाल लड्डू लटकाया, लाला ने लाल लड्डू लटकाया, लाला ने लाल लड्डू लटकाया, लाला ने लाल लड्डू लटकाया।
0: भाई रुक तो जाए, रुक तो जाए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: गलत।

0: अच्छा कुछ और कहेंगे आपसे ना हो पाएगा वैसे.
1: मैं दो भाई बहन सुनते हैं उसी के थोड़ा गाना सुनाएगा दादी.
0: बिल्कुल बिल्कुल गाना
1: का गर्म नहीं जान जाए उनको सुनाए.
0: चलें गाना आपको जरूर सुनाते हैं जी. जरूर जरूर.
1: और बड़ी मेहरबानी दादी, बड़ी मेहरबानी. आपको प्रोग्राम में सुनता हूँ.
0: ओके जी, थैंक यू सो मच. बहुत नवाजिश, बड़ी मेहरबानी. और स्वीट कॉलर और इसी के साथ 03000113488 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स. नेक्स्ट कॉलर. हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई अभी. 03000113488 नेक्स्ट कॉलर. हेलो, वालेकुम अस्सलाम मिसेस अली, कैसे ठीक ठाक जी? मैं बहुत अच्छी हूँ. मुझे बताएं प्रोग्राम सुन रही हैं, एंजॉय कर रही हैं? तबीयत भी बेहतर है. चले जबरदस्त, तबीयत भी बेहतर है. डॉक्टर सर सुनाए बोलेंगी. हाँ जी,
2: तो आप ना थोड़ा माइक थोड़ा सेट किया करो क्योंकि हम जो भी बात करते हैं तो हमारी आवाज ऐसी आपको कुछ समझ में जैसे नहीं आता. दबी दबी उसकी आवाज.
0: अच्छा, मेरी आवाज समझ नहीं आती या कॉल पे नहीं आती?
2: आवाज भी थोड़ी दबी दबी सी आती जो हम बात करते हैं ना लोग कॉल पे, तो हमारी भी आवाज ऐसी आती है जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा.
0: चले इसको हम देखते हैं क्या ये सीन है. हमें चेक करते हैं
2: जहाँ से हमारी आवाज आप तक पहुँच रही है ना.
0: ओके जी,
2: इसको आप सुनिए क्या कर रहे हैं.
0: ओके, और कुछ कहेंगी मिसेस अली?
2: अली सो मच मेरी जान है, पान भाई को सलाम.
0: ओके,
2: और अम्मी के लिए सब दुआ भी करे.
0: ठीक है जी. अच्छा, अम्मी की तबीयत ठीक है?
2: आप कुछ कुछ ठीक है अलहमदुल्लाह.
0: चले माशाल्लाह माशाल्लाह,
2: माशाल्लाह सबकी दुआ से.
0: चालीं जी जबरदस्त, अल्लाह पाक उनको मजीद और सेहत दे. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज. 03000113488. एक और गाना प्ले कर रहे हैं जी. गाने के साथ हम जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब. सो आपने कहीं नहीं जाना, आपने देना है मेरा साथ क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

दिल में तेरा घर नहीं, साथ हूँ ठंडा पर सुबह वापस मुझे नशे की कुछ नहीं है मुस्तकिल देती मुस्तकिल चुका सुबह मेरी हो।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीज और जदीद माइक्रोबीज फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हाँ बुड़ी 381 525 786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: our next caller. Hello.
1: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Kaun baat kar rahe hain?
1: आप तो कभी कहते हैं लाड़काना से आपका प्यारा शो सुन रहा हूँ जिंदगी गुलजार।
0: आसिफ अली चाचर कैसे हैं? ठीक ठाक।
1: आप सुना बाजी, आप कैसे हैं?
0: जी अच्छी हूँ। मुझे बताइएगा कि टंग ट्विस्टर सुना है?
1: थोड़ा सा बताओ।
0: थोड़ा सा बताऊँ? थोड़ा सा नहीं, पूरा बताऊंगी। और टंग ट्विस्टर ये है कि लाला ने लंबे लॉन में लाल लाल लड्डू लटकाए।
1: लाला ले लंबे लंबे लाल लाठू लड़का, लाला ले लंबे लंबे लाल लाठू
0: लड़का, लाला ने लंबे लड्डू लॉन, नहीं सॉरी, लाला ने, आपने मेरा भी खराब करवा दिया। लाला ने लंबे लॉन में लाल लाल लड्डू लटकाए।
1: लाला ने लंबे लाल लाल लड्डू लटकाए। लाला ने लंबे लड्डू लाल लाल
0: लंबे लड्डू नहीं, लाला ने लंबे लॉन में नहीं होगा।
1: आसान नहीं है।
0: आसान नहीं है। ओके, और कुछ कहेंगे?
1: आपको सलाम, आपकी टीम को सलाम।
0: ओके,
1: जय बनी कटवर बिलावल कटवर।
0: Okay, Ji, Allah Hafiz, thank you so much. 03000113488. Next caller, check karenge corner kahan se. Hello.
2: Assalam
0: alaikum. Wa alaikum assalam, kaun kahan se?
2: Hazir. Assalam.
0: Kaun baat kar rahe? हेलो
2: जी, जी
0: आपकी आवाज़ डिस्टॉर्शन आ रहा है साथ साथ, और कहीं सही जगह जाके बात करें, सिग्नल प्रॉपर ना होने की वजह से आवाज़ नहीं आ रही है। थोड़ी देर। हेलो
2: जी,
0: ओके जी, कॉल ड्रॉप हो गई है और वेरी बैड। 03000113488

0: It's time to commercial break.
1: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भाग
2: करते हैं। घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जरदारी पास में बिलावल भुट्टो जरदारी जो थोराए तो आया फील्ड मार्शल जी जंग के खात्मे के लिए किरदार के खराज तहसीन पेश क्यों था। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर के मुबारकबाद पेश क्या तो जंग की बाह विसायण में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम किरदार अदा कर जंग के खात्मे के लिए चीनी सदर सऊदी

0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03125252786
2: जी हाँ बुड़ी 381 5 5 786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

तुम्हारे पास तो मुआजिज़ों का बादशाह है, तुम्हारे पास तो मुआजिज़ों का बादशाह है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। जब दंदड़ा सभी खूबसूरत मासूम ही सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात में से जाकर जमीन से आसमान तक जिंदगी से मुंह तक चांद से तारों कम से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जनाब आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर आप इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जो प्रोग्राम आप लोगों के लिए पेश किया जा रहा है इस प्रोग्राम में आप लोगों की खूबसूरती की बातें होती हैं और साथ साथ आप लोगों को बताया जाएगा कि अगर आप हसीन और खूबसूरत बनना चाहते हैं खूबसूरती को मेंटेन रखना चाहते हैं तो ये सब कैसे हो सकता है। बिल्कुल जी बताएंगे सब कुछ बताएंगे। ओके जी कहते ना कि इतनी जल्दी क्या है अभी तो हमने स्टार्ट किया था, जरा अपना भी तारीफ करवाते हैं सो लिसनर्स प्रोविजन टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर जो आरजे एंड योर टीजे सिद्रा मुस्कान नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए और साथ ही साथ जितनी भी प्यारी प्यारी समाज है हमारे साथ मौजूद है तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ जरा अपने हाल चाल बताते जाइए सो डियर लिसनर्स हालत कैसे है आपकी हालत है उम्मीद शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ली हैं। आपको पता है ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होते हैं और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ ओ इतनी सारी गालियों करने आए हूँ। तो बिल्कुल रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ मजे करने के लिए बात करने के लिए और अच्छा सा म्यूजिक कलेक्शन एंजॉय करने के लिए। ओके जी इसी के साथ साथ बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। तो भाई अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्रा आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं आगे से प्रोग्राम करते हैं जी एक बहुत प्यारी सी नात के साथ, बहुत प्यारी नात हमारी लिस्ट में मौजूद है तो उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से इस्तेमाल कर रहे हैं खूबसूरत होते जा रहे हैं और खूबसूरती को वेलकम करते जा रहे हैं।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: आई हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03125252786।
5: जी हाँ, बुड़ी 231 525 786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: नेटवर्क हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सगरन मेहरापुर मातली और जनाब मटियारी लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप लोगों के साथ साथ मौजूद है प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो खूबसूरतियाँ कैसे और किस तरह से आपको मिलने वाली है ये इस प्रोग्राम में आप लोगों को पता चलता है और उस प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जाता है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं या फिर शायद आप लोगों को नहीं पता। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो इनके क्या ऐसी खास बातें हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी खूबसूरती को हमेशा के लिए बढ़ा पाएंगे और वो वाली आपको खूबसूरती मिलेगी। ऐसा होता है ना बहुत से लोग आकर ये कहते हैं कि बाजी अगर ऐसा सोना थी व्यासी वरी ऐसा प्रोडक्ट लगा छो सी तो वरी ऐसा अगर जो ना खराब थी वे स्किन तो इन गारंटी बिल्कुल आई तो अगर ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करो पे तक बुधाया वन तो बाबा जेका तांगे खूबसूरती मिलंदी वो तांजी हुंदी सही आ तांगा कोई भी नखर सिंदो एक आडे भी न वेंदी बस तां बेफिकर ती करे लगाइंदा रहो ये खूबसूरती तवांके जेका मिली आ वो हमेशा जलाए तवां सा गड हुंदी। तो बिल्कुल ही व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ जेके तवांके बुधाइंदा सी इस्तेमाल करण जलाए उन के अलावा मो जमा का सवाल जेको पुछा टॉपिक जेको आए प्रोग्राम जो वो बिल्कुल इयो आहे त तवां मुखे बुधायो था छा कदी तवां इए कयो आहे त तवांके इंसान के सुञाणो भी था तवां उन के जानो भी था पर तवां के पहचान का मना करे छड्यो आहे यानी कि आप उसे जानने से इनकार कर चुके हैं बताएं जरा मुझे जल्दी से। और इसके साथ साथ अगर आप हमें ज्वाइन कर दी जा रहे हैं 888 और फेसबुक पर तो जो लोग हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं वो पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए। तो लाइक और शेयर करते जाइए दोस्तों के साथ हमारी पोस्ट को जो है ना वो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि मार्केट में व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे और इस्तेमाल करने पड़ेंगे ऐसे नहीं कह रही भाई इनकी खास बातें ऐसी हैं कि आप लोगों को इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे। तो जब हम बात करें यहाँ पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तो इनके जो प्रोडक्ट्स है ना वो भाई इतने जबरदस्त हैं कि अगर मैं बात करूं तो इसमें हर तरह का आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि भाई हमने सिर्फ नाइट क्रीम तैयार कर ली है साबुन तैयार कर लिया आपको बोलेंगे भाई आप लगा दे ऐसा नहीं आप लोगों के लिए हर तरह वाला प्रोडक्ट मौजूद है। आप साबुन लगाने वाले लोग हैं तो साबुन लगाएंगे नाइट क्रीम लगाएंगे फेस वॉश लगाएंगे एक्नी ट्यूब लगाएंगे और फेयरनेस क्रीम लगाएंगे लोशन है हेयर रिमूवल लोशन है इतने सारे मजे मजे के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तभी आप जानेंगे कि वाकई भाई गाल में दम तो हो। सो बिल्कुल तमाम अगर इस्तेमाल करना चाहो था व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट तो अगर कोई सुठी फेयरनेस क्रीम जो कढ़ा आयो अगर तुम यो सोचो था तो अस लाइन गर्मी में मेकअप करण ढो मुश्किल कम थी वो है मेकअप बिल्कुल गर्मी में न कजे तो बेहतर है छो जी तवे चेहरे से एक वधना वा तो उन तवे यो अहसास अगर अस मेकअप क्यों था या फिर बाहर तुम निको था खास कर मू जी वर्किंग जी कम कहना तवे यह चीज जरूरी है तो पा के टिपटॉप कर बाहर निको टिपटॉप करने लाए तवाज लाए व्हाइट एज लवली क्रीम तैयार कई है व्हाइट एज लवली क्रीम जेका रेडिएंट अल्ट्रा वाइटमिन्स से तैयार थियल है जेमें वाइटमिन सफा भरियल सफा भरियल वाइटमिन्स उनका अलावा वाइटमिन्स से गडो गड जेको आने अंदर सनस्क्रीन भी एड थियल है सनस्क्रीन भी इनमें विधि वही है जो खास रीजन यो है यानी कि सफा तवाज लाए अड़ो प्रोडक्ट तैयार किया जो तवाजी खूबसूरती की भी वधाए तवाको तवाजी स्किन के प्रोटेक्ट भी करे तवाजी स्किन की हिफाजत भी करे तो मैं सोली सिंधी में बुधाईंदी हलान तवाजो परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट में अची वो है जो सिर्फ एकड़ो प्रोडक्ट लगाइंदा तवा खूबसूरती भी मिली तवे चेहरे जहा मसला भी खत्म थी वा तवा अगर कम कर मेकअप करण की जरूरत पवी है जी खातन होंद खास कर स्कूल में टीचर आयो या पढ़ो था पढ़ायो था या कोई भी जॉब कर कोई भी कम कर मेकअप कर वो पाया तो व्हाइट एज लवली क्रीम ट्राई करो तवी स्किन के सफा जबरदस्त कर छींदी हर स्किन के मुताबिक तैयार थियल है मर्द मायू हर कोई लगाए तो में एज लिमिट भी ना यानी कि ये न तो बाबा एतरी उम्र वा मू लगाइंदा एतरी वारे लगाइंदा व्हाइट एज लवली क्रीम की यह सब का भली गाल है तो इनके हर कोई इस्तेमाल करे सके तो बार बच्चा कुराड़ा मायू मर्द हर कोई लगाए तो बिल्कुल जी, सो वाइट एज लवली क्रीम के तव्हां बि ट्राए करे ॾिसो, तव्हांजी ख़ूबसूरती सफ़ा ईअं चमकी पवंदी ऐं तव्हां सफ़ा ईअं सुहिणा सुहिणा थी वेंदा। लॻाइण खां पहिरियां जेको आहे तव्हां पंहिंजो फेस वॉश लाज़मी कंदा कयो, मुंहुं धोईंदा कयो, जीअं तव्हांजी स्किन तां जेके इहा डस्ट आहे, पल्यूशन आहे, गंदगी आहे, उहो सॼी रिमूव थी वञे, ठीकु आहे। उन खां अलावा तव्हांजे लाइ वाइट एज जो साबुण बि मौजूदु आहे, तव्हांजे लाइ वाइट एज जो फेस वॉश बि मौजूदु आहे। तव्हां साबुण लॻाईंदा त तव्हां साबुण लॻाईंदा, तव्हां फेस वॉश लॻाईंदा त तव्हां फेस वॉश लॻाईंदा। साबुण जेको आहे एवोकाडो मिल्क ऐं एलोवेरा सां तयारु थियल आहे, ऐं फेस वॉश जेको आहे वाइटमिन सी सां तयारु थियल आहे। एॾा ज़बरदस्त प्रोडक्ट आहिनि तव्हांजे लाइ, तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसो बाबा। अगरि असां ॻाल्हि कयूं वाइट एज ब्यूटी क्रीम जी, त बिल्कुलु तव्हांजे लाइ हाणे नाइट क्रीम बि अची वई आहे। ख़ासि करे जेके माण्हू हूंदा आहिनि जेके चवंदा आहिनि असांखे नाइट क्रीम सुठी कोन थी मिले, त बाबा तव्हांजे लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम मार्केट में अची वई अथव। वाइट एज ब्यूटी क्रीम जेका हणण खां पोइ तव्हांजी स्किन फ्रेश थी वेंदी, तव्हांजी स्किन फेयर थी वेंदी, तव्हांजी स्किन जेका ग्लो थी वेंदी, तव्हांजी स्किन ते ग्लो अची वेंदो, ऐं तव्हां सफ़ा ईअं गोरा चटा वी आई पी थी वेंदा। उन खां अलावा अगरि तव्हां एक्नी जी वजह सां परेशान आहियो, दाणा तव्हांजो पीछो नथा छॾनि, तव्हां मर्द आहियो, तव्हां ख़वातीन आहियो, टीनेजर्स आहियो, या फिर कहिड़ी बि एज में तव्हांखे एक्नी अची विया आहिनि, तव्हां उन्हनि खे ख़तमु करणु चाहियो था, एक्नी सां गॾोगॾु एक्नी जा निशान तव्हांजे चहिरे ते मौजूदु आहिनि, या वरी तव्हांजे चहिरे ते को अहिड़ो निशान आहे, को धक आहे, को सड़ण जो निशान आहे जंहिंखे तव्हां ख़तमु करणु चाहियो था, त बाबा उन जे लाइ हिकिड़ो ई तरीक़ेकार आहे, त तव्हांखे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमालु करणो आहे। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको आहे एतिरो ज़बरदस्त ट्यूब आहे जेको तव्हांजी स्किन खे ख़ूबसूरत बणाईंदो, तव्हांजी स्किन जा एक्नी ख़तमु कंदो, तव्हांजी स्किन जा निशानात ख़तमु कंदो। उहे केॾा पुराणा निशान छो न हुजनि, सड़न जो निशान हुजे, कट जो निशान हुजे, हर निशान ख़तमु थी वेंदो जॾहिं तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमालु कंदा। हीअ तमामु ज़बरदस्त प्रोडक्ट आहिनि जेके वाइट एज कंपनी जा प्रोडक्ट आहिनि, वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि, तव्हां किथां बि वञी ईज़ीली नालो वठी करे इन्हनि खे परचेज करे सघो था। सो बिल्कुल सी परचेज कयो, इस्तेमाल कयो, ऐं पाण खे सोनो सोनो गोरो गोरो वीआईपी वीआईपी बणाईंदा रहो, छो त ख़ूबसूरती हाणे तव्हांजी तव्हांजे हथनि में अथव। ॻाल्हि आहे सिधी बाबा, अगरि तव्हांजे एरिया में नथा मिलनि त पोइ तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595। जल्दी से नंबर डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में भी मिले वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

ओके पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, कहाँ से सुन रहे हैं और साथ ही साथ इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये भी बताइएगा। टॉपिक को फॉलो कर रही है और साथ साथ इमदाद अली बलोच भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम इमदाद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक मजे में। अच्छा मीर बेवस कहते हैं रिश्ता सुन रहे हैं, बिल्लो जिंदा है। बिल्लो ने कहाँ जाना है बिल्लो? अच्छा मोहम्मद सलमान के थे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, चलें फिर देखते हैं कि आप क्या जवाब देते हैं। और इमदाद भाई कहते हैं आज तक मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, चलें अच्छी बात है अच्छी बात है। मोलाई मुजाहिद लिखते हैं कि सिडो सॉन्ग प्ले करना, अच्छा तव जो ओल्डी गोल्डी गाना फरमाइश करना, उन्होंने कोई गानो फरमाइश कर। और सुफियान अहमद हमारे साथ है सांगड़ से, वेलकम करते हैं सुफियान आपको भी। अच्छा नियाज हुसैन मलिक हमारे साथ कहते हैं सो स्वीट योर शो, थैंक यू। अच्छा मीर बेवस कहते हैं टॉपिक हमने बहुत बार ऐसा किया है, अल्लाह। या परदेसी भाई हमारे साथ मौजूद है, हेलो। नियाज हुसैन मलिक हाय। मोहम्मद समान कहते हैं अच्छा कहते हैं शादी के टाइम दुल्हन की सहेलियों को पहचाने से इनकार किया जाता है, ये टॉपिक है। क्या बात है मोहम्मद जमान भाई, तुसी वाकई भाई बड़े चलाक ब्रो हो। और इमदाद कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। नजीर खोसो में सुन रही बलूचिस्तान से, बहुत शुक्रिया भाई जान। अच्छा ये मोहम्मद अली खोसो हमारे साथ हैदराबाद मटियारी से प्रोग्राम सुन रहे हैं, मेरे साथ बाबल खोसो हैं और सलाम सारी टीम को। ओके जी वेलकम करते हैं आपको। बिलाल अली कहते हैं अवां जी टॉपिक जो जवाब हा माँ इं कयो आई कंदो आया हरू भरू कंखे सुण का इनकार कंदो आया वो मजो इंदो है अला जाई बुदा तो ये था वो मजो इंदो है। हकीकत बुधाएं तो वाकई मजो इंदो है। ओके जी बिल्कुल जी बिल्लो जिंदा है और बिल्लो जिंदा ही रहने वाली है। और साथ साथ जो है ना ये बिल्लो के इतने चर्चे क्यों होते हैं ये आप जानते हैं, क्योंकि बिल्लो भाई खर्चे करती है अपने ऊपर। और बिल्लो इस्तेमाल कर रही है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आप भी इस्तेमाल करें ताकि आपके भी चर्चे हो और आप भी बिल्लो की तरह फेमस रहें और हमेशा फेमस रहें। ओके जी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और डाल करते रहिए 03157990595।

टॉपिक समझो बाबा, टॉपिक समझो। टॉपिक यो रखियो तव्हां मूंखे ॿुधायो था छा करे तव्हां ईअं कयो आहे की इंसान खे तव्हां सुञाणींदा हुजो, ठीकु आहे, सुञाणो था तव्हां हुनखे, पर अगरि तव्हां खां कोई पुछे त हिन खे तव्हां सुञाणो था, तव्हां इनकार करे छॾियो, न बाबा मां कोन सुञाणींदो आहियां, समझो था। ईअं कॾहिं तव्हां कयो आहे ॿुधायो त मूंखे। दर्दे दिल मां सभु मौजूदु। हेलो स्वीटी, कैसी है, ठीक ठाक। अच्छा किशोर भाई कहते हैं टॉपिक, असां रोज एॾनि माण्हुनि खे इग्नोर कयूं था, कॾहिं फील ई नथा कयूं त असां हुनखे सुञाणे चुका आहियूं। ईअं बि थींदो आहे, ईअं बि थींदो आहे। शहबाज़ मर्सद मौजूदु, हेलो। अच्छा हिदायतुल अहमदानी, हाँ मैं भी वही सोच रही थी कि वो पता नहीं क्यों प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहे। चले कामों काजों वाले इंसान भी अच्छे होते हैं भाई, कामों काजों वाले बने। और मुजाहिद बोजार क्या कहते हैं,

चलिए भाई, ये तो आपने बहुत अच्छा कर लिया, जैसे को तैसा ही देना चाहिए। राहब हमारे साथ ही लाड़काना से, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। दर्द दिल कहती है कि जिंदगी उस वक्त पुरसकून हो जाती है जब इंसान हर दुख, हर तकलीफ और हर आजमाइश पर अल्लाह के लिए सब्र करता है। बिल्कुल जी, बहुत बेहतरीन। और हमारे साथ अनवर भाई कहते हैं, गरीबन हाय भा, केडियो गालियो कयो था, यो तो हाल हवाल अनवर भा। वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाया वो कौन मेरो प्रोडक्ट लगाने जो इरादो कयो था। अच्छा मोहम्मद अली कोसो कहते हैं, अभी तो हमको आइटम खरीदना पड़ेगा क्योंकि इसकी तारीफ बहुत ज्यादा सुनते हैं। हाँ जी, तारीफ सुनते हैं तो आपको परचेज करना चाहिए, तो जरूर वर्जो ठीक है।

वाले कहते हैं आपको किसी भी, लेकिन मैं अच्छा फिर भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। वैसे घर वाले तो कुछ भी कह देते हैं, उनकी इतनी ज्यादा बातें जो ना वो सीरियसली मत लिया करें। आप आपका जो दिल चाहे ना वो बस आप किया करें, ठीक है। आप इस्तेमाल कीजिए वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपकी खूबसूरती अब आपके हाथ में है तो लाजमी ट्राई करके देखिएगा। वैसे भाई कहती है सिडो मार जवाब अना एढ़ो कम को भी ना ही कहो जडे के ऐसा एड़ी तादी कई तब बुधाई तो माम जरूर चले ठीक है। अच्छा ये मीरपुर खास अब्दुल्ला महर हमारे साथ ही बाजी वाइट एज ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, क्या बात है। अच्छा अरिबा हमारे साथ ही अभी जान मेरी प्यारी दोस्त भाभी इरम कह रही है, हाँ जी बिल्कुल

ओके जी, उसके अलावा हमारे साथी, हाय आपिका, कैसी हैं? मैं दिलरुबा फ्रॉम बेरिया रोड से, काफी दिन बाद एसएमएस किया है। बेस्ट वीआईपी शो है आपका, मैं रोज सुनती हूँ दिल से आपको, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखेगा। एंड मास्टर मंजूर का ये वाला गाना लगाएगा, बिल्कुल तव मुझो फेवरेट गानो फरमाइश कयो आ, त तवां जी पसंद जेको आहे न लाज़मी हलाईंदा। सो दिलरुबा, तव्हां जो मोहब्बत कोन प्रोग्राम ॿुधो पियो। अच्छा अरीबा के थी, आप ही प्लीज प्ले ममताज मोलई। ममताज मोलई हलायूं था तवां जे लाइ। जुलरी खां खालिक लाशारी है टॉपिक ते। लालची दोस्त जेको हुंदो आहे न, मूं सुञातो आहे, उन्हनि खे सुञाण खां इनकार कयो त बहितर आहे। फरज़ाना परवीन जो गानो ॿुधराइजो। ओके जी, ॿुधरायूं था।

अच्छा क्या बात है मेरी लिसनर्स की, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए जनाब और डायल करते रहिए 03157990595। इमरान अली बिरोही भाई लिखते हैं, कायम है एजेंसी मेरी जिंदगी का राबता, या रब उनको अपनी रहमतों से हमेशा शादो आबाद रखना, अल्लाह पाक आपको खुशियों से खुशियों से भरपूर लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन सुमामीन। प्यारे भाई आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं, खुश रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। ओके जी, वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए और साथ साथ यहाँ पर टाइम हो जाता है कि हम जो है ना न्यूज ब्रेक की जानिब जाने वाले हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मौजूद रहेगा हमारे साथ क्योंकि आपका हमारे साथ पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ क्योंकि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाती जाइए, खूबसूरत होते जाइए।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम मुआदों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेजबानी अल्लाह के फजल से पाकिस्तान

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवांजी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

न इहो बि ॿुधायो पिया अगरि तव्हां अञा ताईं कोन इस्तेमालु कया त बाबा कॾहिं लॻाईंदा।

ओके जी, सो प्रोग्राम जी असा लास्ट लिंक में अची वया आयो जिन मानन असा के हाने हाने बुधन स्टार्ट कयो या वरी जेके स्टार्टिंग का वठी असा सगन मौजूद आ बाबा ता जो मोहब्बतू आहन ये कुर्बा आहन तवा जा आई बियो छा सवाल पुछुआ तवा का कदे तवा ये कयो आ सके के ता सुनानी ता हुजो पर ता हासकारी ये कयो जे त ना असा इन के नायो सुनानी ता पर करिस न बाबा न बाबा भलो आए जानी जला कुछ भी न बुधंदी।

ओके जी, सो हेॾा सारा प्यारा प्यारा माण्हू असां सां गॾु मौजूदु आहिनि. किथां किथां तव्हां असांखे जॉइन कयो आहे, तव्हांजे फीडबैक जी तरफ़ अचूं था. अच्छा, विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्राम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन सोलंगी बाजी सदरा अब कैसी है. हमें शमन का गाना सुनाएगा, तेरी यादें भुलाना पाऊंगा. शमन जो गानो आज चले मैं ऐसा मिली हो तो हलाइंदी तवाज लाइन. थैंक यू एंड डेडिकेट जमादार खुदा बख्श सोलंगी, आसिफ सोलंगी, सलीम एंड मुबशिर सोलंगी जी नाले. ठीक है प्यारा भा, मीर अल्लाह डिनो खान टालपुर हमारे साथ. आपका शो वेरी वेरी नाइस. सलाम आपको जी, वालेकुम असलम.

0: मौजूद है सलाम सदरा मुस्कान शो हर रोज वे शौक से बुधा आयू अदीब डी का एक गानो चवान तो अवं प्ले नथा कयो छो मुझी भेण केड़ी नाराजगी सजादुल्ला जमाली हमाले साथी और विलेज रईस रईस मोहम्मद हसन जमाली शफी आबाद नवाब शाह मुझे दोस्त बुधी पयो आशिक अली जमाली अली हैदर अली गुल जाम अली जमाली है ठीक है स्पेस क्यों दी है आपने और प्लीज प्ले सरमन सिंधी जो गानो चले मां यो गानो बिल्कुल लगायो आ लिस्ट में अगर टाइम बची हो तो ता जो गानो भी बुधी वठनास न त मां सुभाने ता जो गानो लाजमी तमा के बुधराइनम ठीक है उनका अलावा ही भी एकड़ो सॉन्ग आ है जो को लिस्ट में लगायो आ मास्टर मंजूर जी आवाज जो गानो आ दिल रुबा जी नाले डेडिकेट करना सी
1: मुझे विछड़ण जो बुधी थो आहे बेकार
0: अच्छा सजाद अली जमाली सिटी नवाब शाह शो इज नाइस सॉन्ग प्ले कीजिएगा मुमताज मौलाई ओके भाई और फहद अली लाशारी हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते हैं गाना सुनाइएगा ओके अच्छा ये माशूक अली अलमानी है विलेज नूर शाह से सॉन्ग सुनाए मुमताज मौलाई एम एम लिखा है अच्छी बात है मैं समझ गई ये मुमताज मौलाई है मना हाने मुमताज मौलाई भी एम एम सैया बाबा याद वही गाना तो माँ होशियार है न तो मतलब समझो था

0: छोकिरी जी घोट मामन तयब थे बुखा हबीबुल्ला थे बुखे ने तवा जो शोभनी नाई से सलाम तवा के वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा तां जो मोहब्बतू आइन वालेकुम अस्सलाम सिंद्रा बाजी हमारी सारी फैमिली आपका प्रोग्राम सुन रही है। शहबाज जमाली और हैं वलद मिस्री जमाली नवाब शाह। शहबाज जमाली वलद मिस्री जमाली नवाब शाह। ओके जी बहुत शुक्रिया आपका, आपकी सारी फैमिली को वेलकम करते हैं। उनके अलावा हमारे साथ हैं जी खालिद महमूद। सॉन्ग जी फरमाइश कई है तवा छाते हुआ भला तवा नाला बाला चेंज थी वया
1: खत्म थी वियो सजो रोई रोई रात में।
0: अच्छा एकड़ी गाल ता मुखे बुधाए जो
1: ना है कोई
0: मतलब छा थियो एड़ो जो मतलब तवा जाही रुखई चेंज थी वया बुधाए जो मुखे जरूर ठीक है। और टॉपिक ते इमरान अली बिरोही भाई क्या कहते हैं कि टॉपिक हां बाजी हां हां मैंने भी एक दिन अपने दोस्त के साथ ना ऐसा किया था वो अब तक नाराज है मुझसे। अरे भाई क्या बात है। अच्छा इरम कहती यहाँ पे जवाब है मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। चले सही अच्छी बात है माशाल्लाह खुश रहे।

अच्छा अनवर भाई कहते टॉपिक असा कदें कदें मिड़े ये कंदा आयो सही आ मिड़े ये कंदा कयो सही आ अच्छा आबिद भाई चाहता चो गुड जॉब थैंक यू वेरी मच मोहम्मद सलमान कहते वाओ वेरी नाइस सॉन्ग गुड खा के मर जावा चावा और मोलाई मुजाहिद 2000 के दी चलो ही वारो गानो हलाजो इन मूवी जो गानो बियो आए जको मो लगायो वा लिस्ट में गजी करे बुदना से ठीक है और ये फिरोज अली बिरोही भाई हमारे साथ हैं हेलो और जवार बच्चल शंबानी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं वेलकम करते हैं प्यारे भाई को और साथ साथ आपको ये बताते चलें जनाब कि ये प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं जिसका नाम है व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो तो आप जल्दी से मुझे बताइए कि आप लोगों के पास जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये अवेलेबल हुए हैं या नहीं क्योंकि कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि आप जो है ना वो आकर ये कह देते कि बाजी सावर था मिलन कौन था मिलन था जाहिर सी गाल तां वठंदो कीअं त तव्हांजे एरिया में तव्हांजे ॻोठ में तव्हांजे सिटी में ही प्रोडक्ट अवेलेबल हुजण घुर्जन उन जे लाइ तव्हांखे नंबर ॿुधाईंदी आहियां प्रोग्राम में घड़ी घड़ी ताकि तव्हां उहो नंबर डायल करे सघो ऐं नंबर डायल करण खां पोइ जेको आहे न त तव्हां पंहिंजे एरिया में अवेलेबल कराए सघो सो नंबर आहे 03-15-799-0595 ही नंबर तव्हां लाज़मी डायल कजो ऐं पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि तव्हां अवेलेबल करायो ऐं तव्हां वठी अचो परचेज़ कयो इस्तेमालु कयो बाबा सोना सोना थी वञो।

0: with you, boy. I'm feeling incredible.
1: ओके जी, और ये हमारे साथ ही अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिद्रा मुस्कान. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं मेरी प्यारी फजीला. और कहती हैं कि सलाम टू माय स्वीट हार्ट मोम एंड कायनात और सब सुनने वाली लड़कियों को. और कहती हैं मैंने तो नहीं बताना. हाँ जी बिल्कुल, आप हमारे साथ मौजूद हैं. थैंक यू. ओके जी, अशफाक खोड़ो हमारे साथ मौजूद है. हेलो. अच्छा चलो ठीक है, तमाम चीजें गालो ही तो पोस्ट सही है. दर्द दिल कहती है कि सितारों में रहता है बस शो करने आता है मुंह जो जानी. यो वरी की

0: क्या बात है जी, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सुना। दर्द दिल कहती अलीसा के साथ मोए मोए हो गया, कॉल नहीं लगी उसकी। मैं भी सोच रही थी अलीसा की आजकल कॉल नहीं लग रही है, ये क्या मसला है? दया कुछ तो गड़बड़े। अच्छा अच्छा था जो अदी अगर आऊं वठण वणा अगर हु पैसा घुरे त के जो नंबर लगाया कोई तवा के डायल करनो है 03 15 799 0595। अच्छा मता है ना के डायल कयो त वे न मौके ते कुटकी खा रख दऊ छा
1: एक एहसान लिया मैं क्या हूं ये पहचान।
0: अच्छा बिलाल कहते हैं हाने मां हर रोज इंदम ईन सैया बाबा।

तुम्हें पता है। अम्मी हमेशा कहते हैं अपना पहला तीर तुम पर वही चलाएगा जिसे तीर अंदाजी तुम सिखाओगी। अब इसी बात पर एक शेर है, शायर जनाब लिखते हैं कि और अब वो लोग मेरी राह की दीवार हैं, और अब वो लोग मेरी राह की दीवार हैं जिनको मैंने अपने अंदर से गुजर जाने दिया। आपकी पैरों के नीचे जमीन वही खींचते हैं जिनको आप उंगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं। आपके खिलाफ जहर वही उगलते हैं जिनको आप बोलने का हुनर देते हैं। आपसे हसद वही करने लगते हैं जो उरूज की दुआएं करते ना थकते थे। मुश्किल में सबसे पहले अक्सर वही हाथ छोड़ते हैं जिनकी मुश्किल में कभी आपने उनका हाथ थामा था। अगरचा पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, जहां बुरे बसते हैं वहीं अच्छे इंसान भी होते हैं, लेकिन बनाकर जांचने से बेहतर है जांच कर ताल्लुकात बनाइए, ताकि नाअहल लोग दिल की ऊंची तख्तों तक कभी ना पहुंच पाए।

वाकई एहसास में बहुत टाइम के बाद होता है कि हम अपने साथ ही कितना कुछ गलत कर चुके हैं, लेकिन अफसोस करने से क्या ही होता है। जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए और इंसानों से सबक सीखते रहिए और कोशिश करें कि अपने आप में जिंदगी अच्छे से जीने की आपको आदत होनी चाहिए। इमाम डिनो बमरू भाष असग मौजूद आन मोबनू तवाजो प्रोग्राम ही बाबा तवाजो पांजो आए जिनो नालो आए वाइट एश इंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड थींदो आए तमा ताई वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सा सो तवाजो सांजो साथ जेको आ बिल्कुल एतरो ही हुयो। इंशाल्लाह वरी अवां सां मुलाकात मुझे सुभाणे वारे प्रोग्राम में थियण वारी आहे 1 बजे खां 3 बजे ताईं तवाजो सांजो साथ हुंदो। सो बुधण न विसारींदा आई लास्ट लिंक तव्हांखे पसंदि आयो सो थैंक यू सो मच। बस अहिड़ा कॉमेंट ॾिसी करे दिलि ख़ुशि थी वेंदी आहे। सो पंहिंजो ओ हेॾो सारो ख़्याल रखंदा, हिते का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां थी, कोई लफ़्ज़ ॻाल्हायो हुजे जेको तव्हांखे सुठो न लॻो हुजे त हुन जे लाइ बि माज़रत कयूं था। सो मोकिलाणी नाहे बाबू सिंह सलामत सा सलामत अलाह हाफ़िज़ बाय लव यू ऑल एंड।

करण शुरू करे छॾी आहे। जहाज़नि जी अचवञु जुमे खां शुरू थी वेंदी। आबनर हर्बुज मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खां टोल टैक्स न वरितो वेंदो। दुनिया जा जहाज़ पंहिंजियूं सरगर्मियूं शुरू कनि। नायब सदर जे डी वेंस चयो आहे त सदर ट्रंप ईरान जे खतरे खे ख़तम करण में कामयाब रहियो आहे। मुआदो 50 सालनि ताईं विच ओभर खे तब्दील करे छॾींदो। मुआदे सां विच ओभर में खुशहाली जी शुरूआति थींदी।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: ते भरोसो करण न आहे। आख़िरी माहिदे जे लाइ ॻाल्हियूं 60 ॾींहनि अंदर थींदियूं। माहिदे जो एतराम न कयो वियो त ईरान जवाब ॾींदो। ईरान जे नाइब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीबाबाद चयो आहे त अमेरिका जी सामूंडी नाकाबंदी अॼु खां ख़तम थी वेंदी। माहिदे जो मतन सयुन बाद जारी कयो वेंदो। ईरान जे ख़ातिम लंबिया चयो आहे त शिकस्त बाद अमेरिका इसराइल वटि हथियार फिटा करण खां सवाइ ॿियो को ऑप्शन न हो। ईरान एटमी हथियार न ठाहींदो। नई मिज़ाइल प्रोग्राम में मज़ामती ग्रुप्स जी मदद कंदो। ईरान जा 24 अरब डॉलर जा मुंजमिद असासा बहाल कया वेंदा। ईरान अमेरिका विच में तय थियल 14 नुक़्तनि जा तफ़सील साम्हूं अची विया। अमेरिकी मीडिया मूजिब वाइदे ते सहन बाद आबना हरमूज़ जी नाकाबंदी ख़त्म कई वेंदी। ईरान जे तेल ऐं पेट्रोकेमिकल बरामदात तां पाबंदियूं हटाई वेंदियूं। लबनान समेत सभिनी महाज़नि ते फौरी ऐं मुस्तक़िल जंगबंदी जो मुतालबो बि शामिल। अमेरिका ऐं संदसि इतिहादनि खे ईरान जी नए से तामीर जे लाइ घटि में घटि 300 अरब डॉलर फराहम करणा पवंदा। अमन वाइदे जी तौसीक सलामती काउंसिल जे ठहराउ वसीले बि कई वेंदी। सदर आसिफ अली ज़रदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी पारां ईरान अमेरिका माहिदे जी आजी हां। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त मुफ़ाहमत हतमी माहिदे जो बुनियाद बणबी ऐं ख़िते में जटादार अमन क़ाइमु थींदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त अमेरिका ईरान माहिदे खे मुस्तहकम करण वारनि कोशिशुनि जी हिमायत कंदासीं। बिलावल भुटो ज़रदारी चयो त अमन माहिदो तकरार घटाइण ऐं ॻाल्हियुनि ज़रिए अमन खे अॻिते वधाइण तरफ़ पहिरियों क़दम आहे। अमन अमल खे अॻिते वधाइण में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी क़यादत ऐं विज़न खे ख़िराज तहसीन पेश कयां थो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इलाइक़ाई इस्तेहकाम जे लाइ हिमायत तारीफ़ लाइक़ आहे। क़ौमी असेंबली जे स्पीकर अयाज़ सादिक़ पारां ईरान अमेरिका माहिदे ते क़ौम खे वधायूं। सरदार अयाज़ सादिक़ चयो त पाकिस्तानी क़यादत अमन अवार्ड जी मुस्तहक़ आहे। अमन माहिदे में पाकिस्तान जे किरदार ते क़ौम खे मुबारक ॾियां थो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी महिनत खे बि सलाम पेश कयां थो। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो त ईरान अमेरिका माहिदे ते जुमेवारे ॾींहुं सहियूं थी वेंदियूं। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल अमन खे कामयाब करण जे लाइ ॾींहं राति महिनत कई। जापान जे परॾेही वज़ीर जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां फोन ते राब्तो। ईरान अमेरिका माहिदे समेत ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। जापानी परॾेही वज़ीर पारां ईरान अमेरिका अमन माहिदो कराइण वारनि पाकिस्तानी कोशिशुनि जी साराह। ॿिन्ही अॻवाणनि जो राब्तनि में रहण ते इतफ़ाक़। गडियल क़ौमनि समेत आलमी बिरादरी पारां अमेरिका ईरान विच में तय थियल माहिदे जी आजियां। चीन, तुर्की, सऊदी अरब, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कैनेडा ऐं ॿियनि मुल्कनि पारां आजियां। अॻवाननि चयो त जंग जे ख़ात्मे सां दुनिया में अमन जो नओं दौर शुरू थींदो ऐं अवामी मसला हल थींदा।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: ऐं हा, गोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

का इट्स 4:15 पी इंटरनेशनल पाकिस्तान मोहम्मद उमर बुग्यो ट्रस्ट हॉस्पिटल मीरवा रोड वेजो डिस्ट्रिक्ट जेल डिफेंस सिटी मीरपुर खास इट्स

0: पुरहास राबते के लिए मोबाइल नंबर 0335 29 71 770 0313 38 41 3024।
1: पाकिस्तानी शान।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज। GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
2: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एश ब्यूटी क्रीम। खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: One, two, three.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अमेरिका सां मुआहदे ते जुमे ते जिनीवा में सयूं कयूं वेंदियूं। सयुनि खां अॻु ईरानी अमलदार पाड़ेसरी मुल्कनि जा दौरा। अमेरिका खे ईरानी अवाम जो भरोसो हासिल करण लाइ डिघो सफ़र करणो पवंदो। ईरान हाणे वधीक ताक़तवर थी उभरियो आहे।

0: अल्हम्दुलिल्लाह ईरान अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम मुहादों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेजबानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की दो ममालिक के दरमियान मुआहदा नहीं जनाब स्पीकर बल्कि अमन और मुकालमे की फतह है।
1: पाकिस्तान की चाकड़ी कामयाब अमेरिका ईरान समूरन महाजन से जंग खत्म कर छी बिन्हीं मुल्क विच में जंग के खात्मे वारो शुरुआती मुआहदो पाकिस्तान की मेजबानी हेठ स्विट्जरलैंड के शहर जनीवा में 19 जून से वजीर आजम शहबाज शरीफ ए बया शरीक थींदा। कौमी असेंबली में खिताब कंदे वजीर आजम शहबाज शरीफ जो चवण हो तो जंग की डिघी रात बाद अमन जो सिज निकरी चुको है। ईरान अमेरिका लबनान समेत समूरन महाजन से जंग रोकने जो ऐलान कयो। तारीखी मुआहदे की तकरीब 19 जून जुमे दिहाड़े जनीवा में थींदी जैसी मेजबानी पाकिस्तान कंदो। ये बिन मुल्कन में अमन मुआहदो न पर डाहप ए सफारतकारी की फतह है। मुआहदे से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई समेत सभी के मुबारकबाद दें तो जैस तीन मुआहदे जहा समर आवाम तीन भी पहुंचंदा सुख से न वेहंदुस। वजीर आजम शहबाज शरीफ के ऐलान बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से मुआहदो थे तस्दीक कर छी। डोनाल्ड ट्रंप जो चवण हो तो मुआहदे से सही बाद जुमे वाले दिहाड़े आबनाए हुरमज भी खुली वो ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी भी खत्म कर शुरू कर छी है। जहाजन की अचवंज जुमे का शुरू थी आबनाए हुरमज में गुजरंदड़ जहाजन का टोल टैक्स न वरतो वो दुनिया जहा जहाज पांच सरगर्मी शुरू कन। नायब सदर जे डी वेंस जो चवण हो तो सदर ट्रंप ईरान के खतरे के खत्म करण में कामयाब थी वो है। मुआहदो 50 साल ती विच ओभर के तब्दील कर शुरुआत सदर आसिफ जरदारी नायब वजीर आजम इसहाक डार ए पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पारा ईरान अमरीका मुआहदे की आजियां। सदर जरदारी जो चवण हो तो मफाहमत के हतमी मुआहदे जो बुनियाद बणबी ए खिते में जटादार अमुन कायम थो। नायब वजीर आजम इसहाक डार अमरीका ईरान मुआहदे के मुस्तहकम करण वाल कोशिश की हिमायत कंदी। बिलावल भुट्टो जो चवण हो तो अमुन मुआहदो तकरार घटाण ए गाल जरिए अमुन के अगत तरफ पे कदम है। अमुन अमल के अगत में वजीर आजम शहबाज शरीफ की क्यादत ए वेजन के खराज तहसीन पेश क्या तो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की इलाकई इस्तेहकाम लाए हिमायत तारीफ लायक है। कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक पारा ईरान अमरीका मुआहदे से कौम के वाधायूं। सरदार अयाज सादिक जो चवण हो तो पाकिस्तानी क्यादत अमुन अवार्ड की मुस्तहक है। अमुन मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार से कौम के मुबारकबाद दें तो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की मेहनत के भी सलाम पेश क्यों था। दिफा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ चयो तो ईरान अमरीका मुआहदे से जुमे वाले डी सयू थी वेंदी। वजीर आजम ए फील्ड मार्शल अमुन के कामयाब करने लाए डी रात मेहनत कई। गडियल कौमन समेत आलमी बिरादरी पारा अमरीका ईरान विच में तय थियल मुआहदे की आजियां चीन तुर्किया सऊदी अरब

सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4
1: और सदका

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध जे नए माली साल जी बजट 17 जून अरपा डीह पेश कई वेंदी। सरकारी मुलाज़मन जी पघारन में 10%, रिटायर्ड मुलाज़मन जी पेंशन में 8%, पोरियतन जी माहवार उजूरे में 20%, मुलाज़मन जी पघारन में 10%, रिटायर्ड मुलाज़मन जी पेंशन में 8%, पोरियतन जी माहवार उजूरे

0: अल्हम्दुलिल्लाह ईरान अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम महादों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। तारीखी माहदे की बाजाबता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेजबानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की दो ममालिक के दरमियान मुआहिदा नहीं जनाब स्पीकर बल्कि अमन और मुकालमे की फतह है।
1: पाकिस्तान जी टैकड़ी कामयाब अमेरिका ईरान समूरन माजन ते जंग खत्म करे छड़ी बिन्हीं मुल्कन विच में जंग के खात्मे वारो शुरुआती मुआहिदो पाकिस्तान जी मेजबानी हेठ स्विट्जरलैंड के शहर जनीवा में 9 जून ते थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं ॿिया शरीक थींदा। कौमी असेंबली में खिताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त जंग जे डिघी रात बाद अमन जो सिज निकरी चुको आहे। ईरान ऐं अमरीका लबनान समेत समूरन माज़न ते जंग रोकण जो ऐलान कयो आहे। तारीख़ी मुआहिदे जी तकरीब 19 जून जुमे वारे ॾींहुं जनीवा में थींदी जंहिंजी मेज़बानी पाकिस्तान कंदो। ही ॿिन मुल्कनि में अमन मुआहिदो नपर ॾहप ऐं सिफारतकारी जी फतह आहे। मुआहिदे ते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐं ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनई समेत सभिनी खे मुबारक ॾियां थो। जेसिताईं मुआहिदे जा समर अवाम ताईं न पहुचंदा सुख सां न विहंदुसि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252576।
5: जी हा 2315525786
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।
6: Hi, hi, hi.

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

सिंध जी नए माली साल जी बजट 17 जून 2024 दिहाड़े पेश की वी थी। सरकारी मुलाजमन जी पगार में 10%, रिटायर्ड मुलाजमन जी पेंशन में 8%, पोरतन जी माहवार अजूरे में 20% वाध जो इम्कान। सिंध के गवर्नर निहाल हाशमी सिंध असेंबली जो बजट इजलास 4 वगे तलब करे वरतो। सिंध असेंबली जी बजट इजलास का अग बजट की मंजूरी लाए सिंध काबिना जो इजलास भी थन्द। नए माली साल में सूबाई तरक्याती बजट 800 अरब रूपये का घट रहने जो इम्कान। मौसमियाती तब्दीली सेहत ए तालीम वाले मनसूब के अहमियत दिनी वेंदी। वडो वजीर मुराद अली शाह नाणे वाले वजीर की हैसियत में 10 भेरो सिंध की बजट पेश कंद। आबनाए हुरमज मुकम्मल तौर खुली वो है। सामूंडी जहाजन की अच वंज भी शुरू थी वही है। अमरीकी सदर के नए दावा सामू अची वही मुकम्मल तौर खुली वो है। सामूंडी जहाजन की अच वंज भी शुरू थी वही है। अमरीकी सदर के नए दावा सामू अची वही सोशल मीडिया से जारी।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: तो मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
1: मुर्गी मुहागी, मच्छी मुहागी, ताजू सब्जी खाओ, सेहत बढ़ाओ। आलो

0: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलो वेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: और इस तकरीब की मेजबानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की। दो ममालिक के दरमियान मुआहिदा नहीं जनाब स्पीकर, बल्कि अमन और मुकालमे की फतह है।
2: पाकिस्तान जी ट्रैकडी कामयाब, अमेरिका ईरान समूरन

0: सभिनी खे मुबारकबाद ॾियां थो। जेसि ताईं मुआहिदे जा समर अवाम ताईं न पहुचंदा, सुख सां न वेहंदुसि।
1: अबडा हुर्मुज़ मुकमल तौर खुली वियो आहे ऐं समुंडी जहाज़नि जी अचवञ बि शुरू थी वई आहे। अमरीकी सदर जी नई दावा साम्हूं अची वई। सोशल मीडिया ते जारी कयल बयान में डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त अबडा हुर्मुज़ मां वॾी तइदाद में तेल सां भरियल जहाज गुज़री विया आहिनि। समुंडी जहाज़नि जी अचवञ लाइ ॿिया बि समुंडी लग मौजूद आहिनि। इन खां अॻु डोनाल्ड ट्रम्प ईरान सां वाइदे जी तस्दीक कंदे चयो हो त अबडा हुर्मुज़ मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खां टोल टैक्स न वरितो वेंदो। दुनिया जा जहाज पंहिंजियूं सरगर्मियूं शुरू कनि।
0: मुआहिदे जो मक़सद ॾोहनि खे माफ़ करण या विसारण न आहे। ईरानी क़ौम पंहिंजी क़यादत खां महरूम थी। अमरीका ऐं इसराइल जे ज़ुल्मनि खे कॾहिं बि न विसारींदासीं। अबडा हुर्मुज़ जा समूरा मामला ईरान ई ॾिसंदो। लबनान समेत समूरनि महाज़नि ते जंग ख़तम थियणु घुर्जे। अमरीका सां मुआहिदे बाद ईरान जो बाज़ाब्ता मौक़िफ़ साम्हूं अची वियो। तहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ईरानी परॾेही तर्जुमान जो चवण हो त असां वॾियूं क़ुर्बानीूं ॾेई पंहिंजे वतन जो दिफ़ा कयो। ईरानी अवाम पंहिंजी फ़ौज जो भरपूर साथ ॾिनो। आलमी बिरादरी इसराइल ऐं अमरीका जे ज़ुल्मनि जी मज़म्मत करण में नाकाम रही। अमरीका सां मुआहिदे ते जुमे ते जनीवा में सहियूं कयूं वेंदियूं। सहियुनि खां अॻु ईरानी अमलदार पाड़ेसरी मुल्कनि जा दौरा कंदा। अमरीका खे ईरानी अवाम जो भरोसो हासिल करण लाइ डिघो सफ़र करणो पवंदो। ईरान हाणे वधीक ताक़तवर थी उभरियो आहे।
1: सदर आसिफ अली सरदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़दार ऐं पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी पारां ईरान अमरीका मुआहिदे जी आज़ी आहे। सदर आसिफ अली सरदारी चयो आहे त मफ़ामत हतमी मुआहिदे जो बुनियाद पणबी ऐं ख़िते में जटादार अमन क़ाइम अमरीका ईरान मुआहिदे खे मुस्तहकम करण वारियुनि कोशिशनि जी हिमायत कंदासीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त अमन मुआहिदो तकरार घटाइण ऐं ॻाल्हियुनि ज़रिए अमन खे अॻिते वधाइण तरफ़ पहिरियों क़दम आहे। अमन अमल खे अॻिते वधाइण में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी क़यादत ऐं विजन खे ख़िराज तहसीन पेश कयां थो। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ़ मुनीर जे इलाक़ाई इस्तेहकाम लाइ हिमायत तारीफ़ लाइक़ आहे।
0: क़ौमी असेंबली जे स्पीकर अयाज़ सादिक पारां ईरान अमरीका मुआहिदे ते क़ौम खे वाधायूं। सरदार अयाज़ सादिक चयो त पाकिस्तानी क़यादत अमुन एवार्ड जे मुस्तहक़ आहे। अमुन मुआहिदे में पाकिस्तान जे किरदार ते क़ौम खे मुबारकबाद ॾियां थो। फील्ड मार्शल आसिफ़ मुनीर जी महिनत खे बि सलाम पेश कयां थो। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो त ईरान अमरीका मुआहिदे ते जुमे वारे ॾींहुं सयूं थी वेंदियूं। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल अमुन खे कामयाब करण लाइ ॾींहं राति महिनत कई।
1: गडियल कॉमन समेत थियल मुआहिदे जी आजिया चीन, तुर्किया, सऊदी अरब, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कैनेडा ऐं ॿियनि मुल्कनि पारां आजिया। अॻवाड़नि चयो त जंग जे ख़ात्मे सां दुनिया में अमन जो नओं दौर शुरू थींदो ऐं अवामी मसला हल थींदा।
0: इसराइल जो ईरान अमरीका विच में तय थियल मुआहिदे खे तस्लीम करण खां इनकार। लबनान ऐं शाम जे कब्ज़ो कयल इलाइक़ा न छॾण जो बि ऐलान। इसराइली दिफ़ा वारे वज़ीर चयो आहे त इसराइल लबनान ऐं शाम जा कब्ज़ो कयल इलाइक़ा न छॾींदो। इसराइली फ़ौज अणॼातल मुदे ताईं लबनान, शाम ऐं गज़ा में मौजूद रहंदी। इसराइल जे तहफ़ुज़ खे हर हाल में यकीनी बणायो वेंदो। इसराइली वज़ीर चयो आहे त अमरीकी मुआहिदे जा पाबंद न आहियूं।

0: सिंध जी नई माली साल जी बजट 17 जून अरब ॾींहुं पेश कई वेंदी। सरकारी मुलाज़िमनि जी पघारनि में 10%, रिटायर्ड मुलाज़िमनि जी पेंशन में 8% ऐं पोरियतनि जी माहवार उजूरे में 20% वाध जो इम्कान। सिंध जे गवर्नर निहाल हाशमी सिंध असेंबली जो बजट इजलास अरब ॾींहुं 2 वॻे तलब करे वरितो। सिंध असेंबली जी बजट इजलास खां अॻु बजट जी मंज़ूरी लाइ सिंध काबीना जो इजलास बि थींदो। नए माली साल में सूबाई तरक़ियाती बजट 800 अरब रूपियनि खां घटि रहण जो इम्कान। मौसमियाती तब्दीली, सिहत ऐं तालीम वारनि मनसूबनि खे अहमियत ॾिनी वेंदी। वॾो वज़ीर माद अली शाह नाणे वारे वज़ीर जी हैसियत में 9 भेरो सिंध जी बजट पेश कंदो।
1: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी बरतानवी हाई कमीशन इस्लामाबाद आमंद बरतानिया जे विच ओभर वारे मामलनि बाबति वज़ीर सां मुलाक़ात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट ऐं पॉलिटिकल काउंसलर नकोल

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए
0: जे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: हो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।